0: द कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जब इंसान
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल यार शमा
2: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा
3: नुद्दा सिवाया का ना
2: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732 65।
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94.4 सवाबी।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

थैंक यू सो वेरी मच यजान खान, डेढ़ डेढ़ ज्यादा शुक्रिया, खुशहाल हो सके बोर्ड से देखे रखा दुकान नंबर 2 लिंक रोड सवाबई के वसीम जनरल स्टोर से जमंग तमाम तमाम प्रोडक्ट मिला भी देख रहा तो बका दीजिए चिदा सिफात कॉस्मेटिक्स आप पाकिस्तान प्रोडक्ट देता दुकानदार ने तलाश करे थे रोमन के बखुशी तो माने डी दुआ गाने हो गई था सही नहीं चीज वहां मुझे खनम मुझे खुआखा इंशाल्लाह पस्ता सुबह खुआखशी जमा खबर बस्ता सुधा खेर खुआखशी ना इंशाल्लाह खुआखा बमुशी देखे रहे ठीक है ना वर्षीखा जमा सलाम दुआ और ब्याह उठो वसीम जान चादर जान पर रेडियो माने डी डे ज्यादा बोले ठीक है ना।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM.